0: काती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: दाई बेड भूख लगता खाजा बाकी नई ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारे हो से अकल बाजे आप हली भुआस कर दिया परल है समय में भुआस कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देखा मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरिया नी चाहू दीदी मई चाहिए बाल विवाह करन नी चाहू ये बाल विवाह नी करन दीदी
3: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कह देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत उ हिंसा के शिकार बन सकत वही विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহা আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারে তো তুহিন উহা পাঠাই তো। ইয়া হেন ই পত্রিকা মে লিখল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হই সে উপচার হুই তাই তোর সমস্যা ফেন আস্তে বা জাইবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, আপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু, তব তো মই অবহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: हेलो बहनी, कता हो तिमीले थाहा छ कि नै सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान 60 में उपहार सहित एक कसौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कति में किन्यौ?
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने।
0: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
4: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848404222।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आज इठा का कना हो बाबा फिर उस तबातीन गतिलो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी रहा
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अन लबाती ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली।
4: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
4: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दू यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

अपन स्वागत बा खोज खबर से मई गीता चौधरी राम राम सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org और मोबाइल एप से टीकापुर एफएम पे सुनती रह बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगर पालिका के कर छूट ऑफर टीकापुर में व्यवसाय निःशुल्क दर्ता 10 वर्षसम्म कर निलग्ना आज सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश के सक्कू भूभाग सहित पश्चिमी वायु के प्रभाव कैलाली दशरथ चंद्र विश्वविद्यालय में 151 कर्मचारी के लिए 1600 बढ़ी के आवेदन राजापुर के अमर शहीद दशरथ चंद मावी की व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष में अमृता श्रेष्ठ चयन ओ नेपाली कांग्रेस के 15 महाधिवेशन आज संसद मनालोयन दर्ता कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के सक्कू भूभाग गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश के पश्चिमी भूभाग मन पश्चिमी वायु के प्रभाव मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलबा कोशी मधेस बागमती प्रदेश के सक्कू भूभाग और गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश के कुछ भूभाग मन मनसूनी वायु के आंशिक प्रभाव रहलबा ज्याकर प्रभाव लेकर हाल कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बद्री व बाकी भूभाग में आंशिक बद्री लगुयाबा गण्डकी प्रदेश के दांचे व कोशी प्रदेश के एक दुई ठाव मन हल्का थे मध्यम वर्षा हुईती रहलबा आज दिन कोशी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बद्री लगुयाबा कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भूभाग में आंशिक बद्री लगुयाबा देश के तराई भूभाग में आंशिक बद्री लगतीबा कोशी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भूभाग के दांचे ठाउं तथा कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाउं मन मध्यम सम्म के वर्षा व हिमपात के संभावना बा कोशी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाउं में हल्का वर्षा के संभावना बा आज रात देश के पहाड़ी व तराई भूभाग मन तथा कोशी व बागमती प्रदेश के हिमाली भूभाग में साधारणतया बद्री लगतीबा ओ बाकी भूभाग मन आंशिक बद्री लगुयाबा तराई भूभाग में बिहान उह हुसुफे लगुयाबा मधेश प्रदेश लगायत कोशी बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग के दांचे ठाव मन मध्यमसम कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश के हिमाली पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाव हल्का तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग को मध्यम प्रदेश के एक दुई ठाव हल्का वर्षा के संभावना बा कैलाली ओ कंचनपुर से भंसार छली के सामान पकड़गिलबा कैलाली के विभिन्न ठाव से अवैध रूप में भारत से भंसार छली करक ननलक अंदाजी मूल्य 27,250 बराबर के सुरती गाड़ी के विभिन्न पाटपुर्जा लगायत के सामान जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के मातहत कार्यालय से खटगिलक प्रहरी के टोली बेवारी से अवस्था में फेरा पार का आवश्यक प्रक्रिया पूरा कैक नियंत्रण में लेलक जनैलबा वस्तक कंचनपुर के विभिन्न ठाव में से अवैध रूप में भारत से भंसार छली गई ननलक अंदाजी 56,900 बराबर के चीनी पेय पदार्थ बीड़ी खैना तेल लगायत के सामान पकड़गिलबा ऊ सामान जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर माटहट कार्यालय से खटगिलक प्रहरी के टोली बेवारी से अवस्था में फेला पार्कन नियंत्रण में लेलक बटवागिलबा टीकापुर नगरपालिका आपन नागरिक हन कर हुकन अलग अलग अफर लनलबा इसे आग एकीकृत सम्पत्ति कर हटाकन भवन जग्गा के अलग अलग दर ढैकन 60% जत्रा कर हटैलक नगरपालिका अन्य कर फे इहे वर्ष हटैलबा नगरपालिका के आर्थिक वर्ष आर्थिक ऐन 2083 अनुसार चालू आवमन टीकापुर नगरपालिका मन दर्ता हुई ऐना व्यवसाय हुक्र निशुल्क दर्ता हुया बाट कलसे प्रमाणपत्र निशुल्क फे हुईनाबा वस्तकन ओत्र कलक नाही स्थानीय कच्चा पदार्थ मन आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना हुईल मन हुकन 10 वर्षसम्म वार्षिक व्यवसाय करफे निलग्ना हुईलबा हाल व्यवसाय कर तिरलक व्यापारी हुक्र असोज मशांत समर व्यवसाय कर बुझैलसे चालू आवके कर्म 5% छूट पौयाबाट यसे आग नगरपालिकामा दर्ता हुईलक तर नियमित रूपमा व्यवसाय कर निबुझैलक व्यवसायकी हकमन कर

0: अहिले से 2075-76 से आग के व्यवसाय कर हो जरिवाना पूरा छुटकेकन ओसिन शुल्क ले जिनाबा अन्य निकायमा दर्ता हुइलक तर टिकापु नगरपालिकामा दर्ता नि हुइलक व्यवसाय हुकन झन भारी अफर मिललबा ओसिन व्यवसाय अब दर्ता हुइल अहिलेसे एक वर्ष के कलक वार्षिक व्यवसाय कर लेखन दर्ता कर सिक दिना व्यवस्था कैगिल्बा वस्तक पहिलो घर निर्माण मन सम्पन्न प्राप्त कलक तर कर बुझाइ बाँकी रहलक घर धनी सम्पत्ति कर कलक बुझैल से पुग्ना हुइल्बा कलसे जरिवाना निलग्ना हुइल्बा संग समयमा सम्पत्ति कर भूमिकर बुझेना नागरिक चालू आर्थिक वर्ष के कर मन 10% छुट पैना व्यवस्था करगिल्बा कर सम्बन्धी विवाद सकुन से धीर व्यवसाय हुइलको जनगणत हुइलक टिकापु नगरपालिका एक मन ठोक्का जिना हुइलक उहर्से सहजताके लागि करके दर परिवर्तन हो सहुलियत कर पलक वडा नम्बर एक वडा अध्यक्ष मोहन विक बटुलबाट पुराना नगरपालिका हुइलक उहर्से सम्पत्ति करले नागरिकन भार परल र नागरिकन सहज भएकैक करके दर परिमार्जन कर्क ध्यूर कर उठेना वडा नम्बर एक वडाध्यक्ष मोहन विक बटुलबाट टिकापुर नगरपालिका के आर्थिक ऐन 2083 अनुसार असार 17 के नगर सभा से पारित कलसेफे बजेट कार्यान्वयन में ढिलाई हुई गैलक मोर्चे नगरपालिका कर छूट अफर ढिलाकैक सार्वजनिक कलक हो टिकापुर नगरपालिका के कर छूट के अफर लेकर उद्योग व्यवसाय हुक्र लाभान्वित हुईटीबाट टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव प्रकाश तिमल सिन्हा संघ व्यवसाय दर्ता में सहुलियत माग करलक मन या कर सुनाई कैक नगरपालिका कर मन छूट व्यवसाय दर्ता में कलक व्यवस्था लेकर व्यवसाय कन फायदा हुई न हुईलक उसे व्यवसाय हुक्र या कर लाभ उठाईपना बटुलबाट नगरपालिका करदाता मैत्री अफर लाना बेर्फे व्यवस्था करुया हुकन जरिवाना लग्नाबा नगरपालिका तोगिलक समय सीमा भितर कर निबुझाइल मन वाकर पाछा लग्ना कर ओ जरिवाना पूरा तिर पर्नाबा नगरपालिका चालू आव के असार मसान्त भितर व्यवसाय कर निबुझाइलक मन पहिला वर्ष 10%, दोस्रो वर्ष 20% ओ उइसे उपर के हक मन 50% जरिवाना लगुयाबा चालू आव के असार मसान्त भितर सम्पत्ति कर ओ भूमि कर निबुझाइलसे 20% लेक जरिवाना लगुयाबा टिकापुर नगरपालिका के क्षेत्राधिकार भितर रहलक सहकारी संस्था असोस मसान्त भितर लेखा परीक्षण हो पुष मसान्त भितर वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न निकर्लसेफे जरिवाना लग्नाबा टिकापुर नगरपालिका के राजस्व शाखा प्रमुख नन्दबहादुर केसी टिकापुर नगरपालिका आगक वर्ष मन ध्यूर कर्म छूट ओ सहुलियत डेलक मन कमैले थाहा पहिलोको इहे वर्षफे करदाता हुक्र समयमा जानकारी लेक सहुलियत लेह अनुरोध कर्लबाट बर्दिया के राजापुर नगरपालिका चार स्थित अमर शहीद दशरथ चन्द माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मन अमृता श्रेष्ठ चयन हुईबाट राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 के वडा अध्यक्ष विदुर पोखरेल की अध्यक्षतामा बैठक भेलासे विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य अमृता श्रेष्ठ दुर्गावती चौधरी नीलम गुप्ता व मनपुरा भण्डारी यहाँ सर्वसम्मत चयन कर्ल रह वाकर पाछ बैठक समिति के बैठक से श्रेष्ठ हं अध्यक्ष में सर्वसम्मत चयन कर्लक हो विद्यालय के इतिहास में पहल पटक महिला अध्यक्ष चयन हुईलक विद्यालय जनैलबा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछ निवाटी सुन्दिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।
2: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
4: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
5: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
4: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
5: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन। हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
4: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तो यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
6: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कैलालीकै गेटामा रहलक शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विभिन्न स्वास्थ्य सेवाकै पटमन 151 कर्मचारी माग दर्ता करबेर 1669 जनाकै आवेदन परल बा। करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिकै लागि माग करलकमा आवेदन परलक मध्ये 544 जनाकै नाउँ संक्षिप्त सूचीमा समावेश कैगिल बा। विश्वविद्यालयकै करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी छनौट सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार योग्यता पूरा कलक उम्मेद्वारकै वर्गानुक्रम अनुसार संक्षिप्त सूची सार्वजनिक कर्गिलक विश्वविद्यालय जनैलबा। परीक्षा समितिकै अनुसार मेडिकल अधिकृतकै 10 पदकै लागि 60 जनाकै आवेदन परलक मन 29 जना संक्षिप्त सूचीमा परलबाट। बायोमेडिकल इन्जिनियरिङकै 1 पदकै लागि 9 जना आवेदन देलकमन 6 जना छनौटहिलबाट। वस्तक नर्सिङ अधिकृतकै 10 पदकै लागि 112 जनाकै आवेदन परलकमन 69 जना सर्टलिस्ट मन परलबाट। रेडियोग्राफी अधिकृतकै 1 पदकै लागि 10 जनाकै आवेदन परलकमन 5 जना हो। फार्मेसी अधिकृतकै 2 पदकै लागि 48 जनाकै आवेदन परलकमन 7 जना संक्षिप्त सूचीमा परलबाट। फिजियोथेरापी अधिकृतकै 2 पदकै लागि 6 जना आवेदन देलकमन 5 जना। ल्याब टेक्नोलोजिस्टकै 3 पदकै लागि 59 जना आवेदन देलकमन 25 जना सर्टलिस्ट मनबाट। सकुन्सेदिर आवेदन स्टाफ नर्सकै 90 पदकै लागि परलबा। ऊ पदमन 542 जना आवेदन देहलबाट कलसे 185 जनाकै नाउँ संक्षिप्त सूचीमन समावेश कैगिल्बा। कांग्रेसकै 15 महाधिवेशन आइतबार से शुरू हुइतिबा। परम्पराके सम्मान और परिवर्तन के संकल्प समुन्नत नेपालकी लाग सबल कांग्रेसकै विकल्पकना नारा सहित महाधिवेशन शुरू हुई लगलग हो। महाधिवेशनकै उद्घाटन समारोह आइतबार दिनका 2 बजे थेसे खुल्ला मञ्चमा शुरू हुयाबा। महाधिवेशनकै बन्द सत्र व अन्य कार्यक्रम सोमबार व मंगलबार 19 थेसे 20 असोज मन हुना बटवागिल्बा। निर्वाचन कार्यक्रमकै लागि 21-22 असोज टोकगिलक केन्द्रीय निर्वाचन समिति जनैलबा। समिति शुक्रबार शनिबार महाधिवेशन प्रतिनिधि हुकनकै नाम दर्ता रजिस्ट्रेशन करलबा। महाधिवेशन हुकनकै नाम दर्ताकै लागि 3500 रूपियाँ टोकगिलक कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे जानकारी करैलबाट। नाम दर्ताकना प्रतिनिधि हुकन कांग्रेस झोला देलबा, झोला मन पार्टी विधान डायरी डटफिन खाना खाजा व नास्ताकै लागि कुपन प्रतिनिधि कार्ड थाइगिल्बा। टीकापुर नगरपालिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टोल कमिटी गठन गर्दिरहलबा। पार्टी नगरपालिका भित्रकै विभिन्न वडाकै टोल कमिटीको गठन हुइतिरलक बटुइलबा। शनिबार नगरपालिकाकै वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 17मा फेर टोल कमिटी गठन कैगिल्बा। जनक प्रसाद सुवेदीकै संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन कैगिल्बा। कमिटीकै उपसंयोजकमा पूनम थापा, सदस्य मन भुवन ओली, रेवाज पुल, अर्जुन चौधरी, अजय भत्तचन प्रवेश कुंवर हनचैन के गिल्बा टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर एक के सभापति चक्रबहादुर बुढ़ा के अध्यक्षता में हुईलक टोल भेला से कमिटी गठन कर गिलक चक्र देवकोटा जानकारी देलबाट। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा यह वर्ष के मनसून नेपाल के सुदूरपश्चिम सहित पश्चिम क्षेत्र से बाहर हुईलक जानकारी करेलवा। महाशाखा के अनुसार सुदूरपश्चिम कर्णाली सहित लुम्बिनी प्रदेश के पश्चिमी भूभाग के ढ्यूर ठाव गंडकी प्रदेश के पश्चिम भूभाग के कुछ ठाव से बाहर गैलक जनागिलवा। विभाग के अनुसार मनसूनी वायु कमजोर हुईती गैलक उहर से नेपाल के बाकी भूभाग से फिर कुछ दिन में मनसून बाहर हुईना संभावना रहलक मौसम बीत के कहाई रहलवा। मनसून बाहर जैती करलक अवस्था में आप भारी पानी पर्ना संभावना नहीं रहलक तर हल्का थे मध्यम वर्षा के संभावना रहलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलवा। पूर्वाधार विकास मंत्रालय गरीब तथा विपन्न नागरिक के आवास सुनिश्चित कर संघीय सरकार से 50,000 और प्रदेश सरकार से 25,000 के कुल 75,000 सम्म अनुदान उपलब्ध कराइना व्यवस्था सहित भवन एन 2083 के विधेयक संघीय संसद सचिवालय में दर्ता करैलबा। भवन एन 2055 संबोधन कर बनलक विधेयक मन प्रत्येक नागरिक नागरिक के परिवार के लागि आवास सुनिश्चित करना उद्देश्य लेकर विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव कर गिलक मंत्रालय के प्रेस नोट मार्फत जनागिलबा। विधेयक में निम्न आय हुईलक परिवार के आवास के ग्यारंटी तथा मध्यम आय हुईलक परिवार के लागि सुरक्षित और व्यवस्थित आवास सुनिश्चित करना व्यवस्था प्रस्ताव कर गिलबा। पहलपटक घर निर्माण करना नेपाली नागरिक सरकार तो गिलक डिजाइन तथा मापदण्ड अनुसार घर निर्माण कर आवश्यक नदी जन्य तथा प्रकृति जन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराइना व्यवस्था प्रस्ताव कर गिलबा। गोठ निर्माण के लागि आवेदन निवेदन देना नागरिक खाना समेत आवश्यक प्रकृति जन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराइना व्यवस्था समेत गिल्बा। विपद प्रभावित असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्ती सुरक्षित ठाउँ में स्थानांतरण कर सरकार लौ घर निर्माण कर देना व्यवस्था भी विधेयक में पारित हुईलबा प्रस्ताव हुईलबा। लौ भवन ऐन तथा नियमावली मन मध्यम आय हुईलक नागरिक के लागि सुरक्षित भूकंप प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा हुईलक स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध कराइना व्यवस्था प्रस्ताव के गिलवा। रू 20 लाख थे से 75 लाख समय के लागत पना घर के लिफ्ट क्षेत्रफल 900 थे से 1,300 वर्ग फीट समय हुईना प्रस्ताव के गिलवा। नागरिक सहूलियत पुनः ऋण मार्फत असीन घन प्राप्त करना व्यवस्था प्रस्ताव कर गिलबा। प्रारंभिक रूप में 5 लाख अग्रिम भुगतानी कैकन 15 वर्षसम मासिक 11,000 किस्ता तीर्ना कैकन घर उपलब्ध कराइना व्यवस्था कै गिलबा। वस्तकन 10 लाख अग्रिम भुगतानी में मासिक 15,000 15 लाख अग्रिम भुगतानी मन अग्रिम मन 20,000 20 लाख अग्रिम मन मासिक 30,000 व 25 लाख अग्रिम मन मासिक 35,000 किस्ता तिना विकल्प समेत प्रस्ताव के गिलबा। निम्न आय हुईलक नागरिक के आवास के ग्यारंटी थे से मध्यम आय हुईलक परिवार के लागि सुरक्षित और व्यवस्थित घर के सुनिश्चितता समय के व्यवस्था समेटी हरेक नेपाली नागरिक के आवास के अधिकार कानूनी रूप में सुनिश्चित करना उद्देश्य लेकर विधेयक लान गिलक मंत्रालय जनैलबा। खोज खबर में फेरफेर विश्राम विश्राम पाछैनीबाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर।
7: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
8: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
9: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइटी रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846774417।
10: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। जापानिज इन्सेफलाइटिस जेई से हालसम्म 131 जनामा संक्रमण पुष्टि हुल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतकै परिवार कल्याण महाशाखा पाचक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सन् 2026 हालसम्म 1372 जनामा एक्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम ईएईएस देगिलक वो मध्य 131 जनामा जापानिज इन्सेफलाइटिस जेई पुष्टि हुलक हो। जेई संक्रमण के कारण हालसम्म 28 जना के ज्यान गैलक परिवार कल्याण महाशाखा जनैलबा। संक्रमित मध्ये 87% खोप नै लगैलक मनिरहलक प्रतिवेदनमा उल्लेख बा। हालसम्म 37 जिल्ला के 90 स्थानीय तहमन जेई संक्रमण पुष्टि हुल बा। अधिकांश संक्रमित धानखेत तथा बंगुर फर्म आसपास बसोबास गर्ना वो कृषि पेशामन संलग्न रहलक पागिलक परिवार कल्याण महाशाखा के प्रतिवेदनमा जनाकिल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश 78 दिन थेसे बजेट विहीन हुईलक बटुटी गैर सरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश तत्काल बजेट लान माग करलबा। महासंघके प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता देवी प्रसाद खनाल विज्ञप्ति जारी करती बजेट विहीनता के अवस्था से प्रदेश के नियमित आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि में असर पर लगलग उल्लेख करगिल बा। प्रदेश सरकार मातहत के कर्मचारी 2 महीना थेसे तलब पाई निशेकलक तथा विकास निर्माण के काम समेत प्रभावित हुइना सिर्जना हुइलक महाशाखा के दावी रहलबा। महासंघ बजेट विहीनता के अवस्था केवल राजनीतिक विवाद के विषय निहोक संवैधानिक व कानून जवाबदेहिता से जोर गिलक विषय हुइलक जनैलबा। नेपाल के संविधान तथा अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकार आइना आर्थिक वर्ष के राजस्व व व्यय के अनुमान असार 1 गते भीतर प्रदेश सभामा पेश करपना व्यवस्था रहलक स्मरण करैती। महासंघ बजेट निर्माण पेश व स्वीकृति के प्रक्रिया अनिश्चितकालीन राजनीतिक गतिरोध के विषय बन निहुना जनैलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो पटक बजेट विहीन अवस्थामा पुग्न सामान्य घटना निहुलक महासंघके कहाइबा। सरकार परिवर्तन के कारण घरी घरी बजेट शून्यता के अवस्था आइना प्रदेश सरकार प्रदेश सभा राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधि के संस्थागत जवाबदेहिता उप प्रश्न हुइलक विज्ञप्तिमा उल्लेख कैगिलबा। संचालन संस्था के सचिव जित बहादुर चौधरी बटुलबाट। ये समाचार के संग खोज खबर रायल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगरपालिका के कर छूट अफर टीकापुर में व्यवसाय निशुल्क दर्ता 10 वर्षसम्म कर निलग्ना। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश के सक्कु भूभाग सहित पश्चिमी क्षेत्र पश्चिम वायु के प्रभाव कैलाली दशरथ चन्द विश्वविद्यालय में 151 कर्मचारी के लागि 1600 बढ़ी के आवेदन। राजापुर के अमर शहीद दशरथ चन्द मावि के व्यवस्थापन समिति में अमृता श्रेष्ठ चयन। नेपाली कांग्रेस के 15 महाधिवेशन आज संसद में लौ भवन एन दर्ता। लित आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 12 बजे नेपाली भाषा में खबर संक्षेप सुन सकबी। आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र भट्टराई धन्यवाद दीदी। मई गीता फे विदाई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
1: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
2: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
3: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
2: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
3: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
4: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: से कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: अरेला सुन चांदी पसल में छटकी तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेंडल बाला औंठी चंद्रमा कांटा नौगेड़ी जस्ता विभिन्न डिजाइन का गरगहना अर्डर करे अनुसार सुपट मूल्य में बनाइन्छन् एक पटक सेवा करने मौका अवश्य दिनुहला
4: अरेला सुन चांदी पसल बलभद्र चौक टीकापुर एलएन मेडिकल अगाड़ी संचालक खुमरा सुनार संपर्क मोबाइल नंबर 98102537।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वहाँ नन्दी एक भुवा आइगेली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटू कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कांसे के कतरा सुघर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 और 9846239161
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टिकापुर में बच्चा देखि बुढ़ा सम्मा टाउको देखि घुड़ा सम्मा को उपचार
3: टीचिंग हॉस्पिटल बाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फैमिली फिजिशियन डाक्टर सरोज खनाल बाट बिरामी को जांच तथा उपचार हुँदैछ
2: आरोग्य मेडिकल मा पाइने सेवाहरू
3: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
2: नवजात शिशुदेखि वृद्ध सम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
3: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
2: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
3: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
2: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
3: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
2: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
2: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637072

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आज तिमी मेरे वरीपरी किन घुम्दैछ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुत्रके छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड्के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसन का गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799-98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
7: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
6: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
7: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सिओपिडी
6: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
7: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
6: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
7: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
6: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
7: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
6: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
7: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
6: सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72
8: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलालीको 9 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना साना किसानका लागि लगानी ल्याउँछौ सुनौलो बिहानी आउँदै गरेको बडा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्बत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी शुभचिन्तक पत्रकार समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबारका दिन टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गइरहेको श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौ स्थान टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहाल समय बिहान 10 बजेदेखि आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टिकापुर कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-641 मोबाइल नम्बर 98-432-86-713
9: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
10: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638887।
11: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: हेलो बहनी कता हो तिमीले था छ कि नै सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान से 60 में उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कति में किन्यौ
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 मा किने
0: 600 रुपैयाँ किन हाल्नु पर्यो 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपैयाँमा आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपैयाँ वाईवाईमै किन हाल्ने 460 मा मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुस् है होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता
4: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 9848-40-22-41।
5: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
6: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
7: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
5: डेलिभरीका लागि
7: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
5: टीकापुर कैलाली
8: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870-10-672
9: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: अरेल्ला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चक्की पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेल्ला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: सुरक्षित जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिने न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
3: अधि गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना टु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटास तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाइ औ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाइ।
4: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846939261।
5: साधारण सभा संबंधी जरूरी सूचना। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर को 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो
2: हजुर हो
0: महिन राजापुर बजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कण्ठे टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हन समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजेक 5 बजेक थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। जानकी गाउँपालिका विपद प्रतिकारी के विषय में विद्यार्थियों को न जानकारी देती, ई काम मजा हुईलक शिक्षकों कन के कहाई। 15 वर्ष थेसे सिलाई कटाई व्यवसाय में रमैती टीकापुर के रीता चौधरी, सिप सिकौ व मेहनत कर युवाओं कन रीता के सुझाव। सुदूरपश्चिम 7,32,000 नागरिक स्वास्थ्य बीमा में आबद्ध, ओ कर लेखा विधि व डिजिटल क्षमता बारे कैलाली के मदिरा व्यवसाय है प्रशिक्षण। आप खोज खबर विस्तार जानकी गाउँपालिका में विभिन्न किसिम के विपद ठुक्र वर्षेनी कुछ न कुछ धनजन के क्षति पुगैना करल बा। इसे बचक लागी गाउँपालिका विभिन्न किसिम के जनचेतनामूलक कार्यक्रम फे संचालन करती ऐटी रहल बा। विद्यालय के विद्यार्थियों का नफे विपद प्रतिकार के विषय में जानकारी देहे शुरू करल बा। कैलाली जिला के विभिन्न किसिम के विपद ऐना करट, जिला में बाढ़ी जन्य विपद, हावाहुरी, आगलागी लगायत के विपद बढ़ी ऐना करल बा। ईसे वर्षेनी धनजन के क्षति हुईना करल बा। असिक विपद से हुईना क्षति से ज्वाग ओ जोगाईक लगी स्थानीय तहथे से विभिन्न सरोकार वाला संघ संस्था मुक्र सचेतनामूलक कार्यक्रम फे करना करल बाट। कैलाली के जानकी गाउँपालिका मौसम पूर्वानुमान में आधारित विपद पूर्व कार्य से संबंधित मौलिक तथा लोक नृत्य प्रतियोगिता समेत करल बा। ईसे विद्यार्थी के पढ़ाई सिप के विकास के संग सृजनशीलता के विकास ओ विपद संबंधी सचेतना फैलेना हुईलक वर्षे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुईलक सरोकारवाला हुकन के कहाईबा। और सरोकारवाला हुकन के कहाईबा महत्वपूर्ण हुईलक शिक्षक मथुरा भण्डारी बटुलबाट। और शिक्षक दुर्गा रावल फे असीन कार्यक्रम लेके पढ़ाई के संग विद्यार्थी के सृजनात्मक क्षमता के विकास हुईना ओ विपद न्यूनीकरण कर सहयोग पुग्ना बटुलबाट। शिक्षक हेमंत रेग्मी ई कार्यक्रम लेकर सचेतना के संग विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास करना बटुलबाट। छुट्टी उमेर से लड़का प्रकन विपद प्रतिकार्य से संबंधित विषय सीखना मजा बाटो। असीन किसिम के कार्यक्रम में आधारभूत और प्राथमिक तह के विद्यार्थी हुकन सहभागी करेल से आमीन मजा हुईना शिक्षक रोशन बहादुर चंद बटुलबाट। विद्यालय में कर्जैना शैक्षिक क्रियाकलाप के संग असीन कार्यक्रम करबेर मौलिकता झलका गिलक उहर से असीन कार्यक्रम हुईना मजा हुईलको असीन कार्यक्रम हन गाउँपालिका निरन्तरता देह आवश्यक रहलक शिक्षक टीकाराम चौधरी बटुलबाट। जहाँ इच्छा वहाँ उपाय कना भनाए कहाई हन टीकापुर के रीता चौधरी चरितार्थ कर्लबाट। परोट पर्क साक्षर बनल हिलक रीता आव सिलाई कटाई व्यवसाय मन रमैटीबाट। एकठो मेसिन से सिलाई कटाई शुरू करलक रीता आव महीना में 50,000 आमदानी कटीबाट। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सीतापुर के रीता चौधरी 15 वर्ष थेसे सिलाई कटाई व्यवसाय में रमैती आईलबाट। 2067 साल थेसे सिलाई कटाई व्यवसाय में लागल हुईलक रीता आपन पेशा व्यवसाय प्रति एकदम संतुष्ट बाट। दीदी देलक एकठो लुगा सिएना मेसिन लेकर घर के कोठा से सिलाई कटाई शुरू करल।

0: डाइहा सहयोग कटी रहल बाटे। रीता की सिलाई कटाई सीखना इच्छा ओत्रा पुरानी हुई, वहां की सिलाई कटाई प्रति के लगाव को मेहनत लेकर रीता यहां समेल बा। वहां आपन विगत हन समझ खन बटुल बाटे। टीकापुर नगर पालिका से प्रदान कर गिलक तालीम तथा सिटी भिटी से संचालन कलक तालीम फे सहभागी होकर रीता सिलाई कटाई के काम सीख लाटे। वहां दोसरो लेवल के तालीम पास फे कर सीख लाटे। वैदेशिक रोजगार में रहलक श्रीमान साठो सहयोग लेकर अपना अब यहां समलक रीता चौधरी आमीन फे लेवल के तालीम लेना हो आपना कपड़ा सहित सिलाई कटाई व्यवसाय संचालन करना सोच मना बाटी। वहां घर के कोठा थे से एक ठो मशीन के सहायता लेकर शुरू कर लग सिलाई कटाई व्यवसाय मना अब तेरह ठो लुगा सेना मशीन बाकल से छ जन रोजगारी फे डेल बाटी। अन्य सिलाई कटाई सीख औया फे रीता चौधरी तालीम देती रह बाटी। पेशा व्यवसाय प्रति के लगाव और मेहनत में विश्वास करना रीता अपन जस्ता और महिला हो कन्फे मेहनत और सीप सीख सुझाव दे बाटे। कौनोफे मने खाली बैठकर बेरोजगार बनना से फे रीता जस्ता सीप सीख आत्मनिर्भर बनना बुद्धिमानी देख जाए। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम बाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस्या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
5: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423359।
6: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाली पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
7: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
6: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।

0: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
1: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
0: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
2: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
0: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
3: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। विपदमा पलक नागरिक खाँ उपलब्ध कराइबेर आवश्यक पना सरसफाई राहत तथा आवास के अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के बारेमा न छलफल हुल्बा। विपदमा पलक नागरिक हुकन राहत दिए बनागिलक स्पेयर मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरके मापदण्ड मान्जेट। विपदमा पलक मनैन खानेपानी सरसफाई स्वास्थ्य प्रवर्धन खाद्य सुरक्षा पोषण आवास र स्वास्थ्य कैकन चाठो सहयोग करपरट असीम सहयोग मापदण्ड अनुसारके हुइपना ओ और विपट नआए कैकन योजना बनैना कार्यक्रम चेतमान कार्यक्रम आवश्यक रहक चेतमान साउथ बटुलबाट दिगो विकास समाज भजनीके आयोजनामा हुइलक कार्यक्रममा बोल्ती जानकी गाउँपालिकाके अध्यक्ष गणेश चौधरी विपटले क दुःख लन्ना हुइलक वर्षे दुःखके बेला फेर मानवीय जीवन सहज बनाई बनलक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना करपना बटुलबाट। उपाध्यक्ष लालमटी कठरिया राहत वितरणकना क्रममा कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि छ राजनीति पूर्वाग्रह आफन्त पराइ जसिन भावनाले क प्रभावित निहोक मानवताके नाटाले राहत पुनर्स्थापनाके काम करपना बटुलबाट। टिकापु नगरपालिका वडा नम्बर एक के वडा अध्यक्ष मोहन विक विपट राहत व्यवस्थापन कना नगरपालिका के आपन विधि रहलक उहीमा रहलक कमी पहिचान हुइलक वर्षे राष्ट्रिय मापदण्ड व मजा हमार सिखाएन प्रयोग करबर एक रूपटा ऐना बटुलबाट। दिगो विकास समाज भजनी के अध्यक्ष आशा चौधरी विपटमा परिचालन हुइना पहिल निकाय स्थानीय तह हुइलक वर्षे स्पेयर मापदण्डबारे थाहा पाई विपद जोखिम न्यूनीकरण व क्षति विश्लेषण मन सहयोग पुग्ना बटुलबाट। सुदूरपश्चिममा 7,32,000 बढ़ी नागरिक स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध हुइलबाट। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयके अनुसार गैलक भदौ मसान्तसम्म 7,32,752 जना बीमा प्रणालीमा जोड़गिलबाट। बोर्डकी सुदूरपश्चिम संयोजक जनक बहादुर साउद बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परिविष्ट हुइलक तथ्याङ्क अनुसार जिल्लागत रूपमा सपुन सेधिर कैलालीके 3,61,979 नागरिक बीमा कलक जानकारी देलबाट। कञ्चनपुरमा 87,000, अछाममा 67,308, बझाङमा 52,211, बाजुरामा 45,454, बैतडीमा 34,270, डडेलधुरामा 33,378, डोटीमा 27,862 ओ दार्चुलामा 23,203 लाभग्राही रहलक उहाँ बटुलबाट। नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नागरिकमा सर्वसुलभ ओ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइना तथा भारी उपचार खर्चके आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ना एक लोक कल्याणकारिणी सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत 2072 चैत 25 से शुरू हुइलक हो। यहाँ व्यवस्थित सञ्चालन गर स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 ओ स्वास्थ्य बीमा नियमावली 2075 अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना कैगिल्बा। संयोजक सौट बीमा योजना नेपालके संविधानके धारा 35 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क ओ सामाजिक सुरक्षाके हक प्रदान गरल अनुसार संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनके महत्वपूर्ण पक्षके रूपमा विस्तार हुइटिरलक बटुलबाट। यसे आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारके लागि उपचार खर्च व्यवस्था स्थापनमा एकदम राहत पुगैतिरलक उहाँ बटुलबाट। संविधानके धारा 51 जमा नागरिकीय आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकीय स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचके व्यवस्था मिलेना उल्लेख बा। उहो अनुसार बीमा योजना कार्यान्वयनमा रहल बा। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुई प्रति परिवार 5 जना 3,500 वार्षिक रूपमा योगदानतिर पर्ना ओ 5 जना बढ़ी सदस्य हुइलसे थप सदस्य 700 के दरले गर्न शुल्क लग्ना करलबा। स्वास्थ्य नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार हालके सुविधाके थैलीमा 2 गुणालेका वृद्धिकरणके सँग 70 वर्ष पर्के ज्येष्ठ नागरिक अति विपन्न अपाङ्गता हुइलक मनै कुष्ठ रोग एचआईभी एमडीआर टीवी के बीरम अंकन के लागि निशुल्क बीमा के व्यवस्था बा सरकार ई समूह के मनिन के बीमा प्रीमियम तीर देना के का व्यवस्था कर गिलक संयोजक सात बटैल बाट संघ सक्कु संगठित क्षेत्र हन आमदानी के 1% योगदान कर राखे का बीमा में आबद्ध होने अनिवार्य व्यवस्था कर गिलक थे वहां जानकारी दिल बाट धनगढ़ीमा मदिरा व्यवसाय संघ कैलाली के आयोजना में कर लेखा विधि तथा डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम हुल्बा कार्यक्रममा नेपाल मदिरा व्यवसाय महासंघ के केन्द्रीय सदस्य पुष्कर राज भाट प्रमुख अतिथि रह कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढ़ी के प्रमुख कर अधिकृत भीम प्रसाद काफ्ले मदिरा व्यवसाय संघ कैलाली के निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम बहादुर धामी चार्टर एकाउन्टेन्ट टेकराज पनेरू अतिथि के रूप में सहभागी रह प्रशिक्षण में व्यवसाय संचालन कर प्रणाली तथा करदाता पालना कर अपना विभिन्न कानूनी व्यवस्था बारे जानकारी देगिल रह आंतरिक राजस्व कार्यालय धनगढ़ी के कर अधिकृत टर्कराज जैसी व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कर विवरण पेश करना प्रक्रिया बारे जानकारी करेल डिजिटल कर प्रणाली बारे समेत जानकारी देगिल बा कार्यक्रम में चार्टर एकाउन्टेन्ट टेकराज पनेरू बिक्री देखाओ हो नाफा भ्रम हो नगद यथार्थ हो विषय मन कार्यपत्र प्रस्तुत कलबाट वहाँ कागज में नाफा देखा गिलसेफे नगद संचित हो उचित तरलता व्यवस्थापन निहुबेर भारे कम्पनी समेत आर्थिक संकट में परसेक नाबटुलाबाट बिक्री व नाफा लेकर कलक व्यवसाय के वास्तविक अवस्था नई देखिना उल्लेख करती वहां उधारा असुली मौजदार व्यवस्थापन हो बलगर आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली में ध्यान दिए व्यवसाय हुकन सुझाव दिलबाट फर्स्ट खबर में एक घड़ी विश्राम पाछी बाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
4: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोका को लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महंगो के गर्ने के नगर्ने
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
4: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
5: कहाँ हुनु भाई टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
4: अब त म ढुक्क
6: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
5: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
8: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
7: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
8: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
7: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
8: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
7: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
8: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
7: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
8: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
7: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
8: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
7: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72
3: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के सक्कू भूभाग गण्डकी और लुम्बिनी प्रदेश के पश्चिमी भूभाग मन पश्चिमी वायु के प्रभाव रहलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलेबा कोशी मधेस बागमती प्रदेश के सक्कू भूभाग और गण्डकी और लुम्बिनी प्रदेश के बाँकी भूभाग मन मनसूनी वायु के आंशिक प्रभाव रहलबा ज्याकर प्रभाव लेकर हाल कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग मन साधारणतया बद्री तथा बाकी भूभाग में आंशिक बद्री लागल बा गण्डकी प्रदेश के डांचे व कोशी प्रदेश के एक दुई ठाव में हल्का थे मध्यम वर्षा हुई रह आज दिनभर कोशी बागमती गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेशके हिमाली ओ पहाड़ी भूभागमा साधारणतया बद्री लागल बा। कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशके हिमाली भूभागमा आंशिक बद्री लागल बा। देशके तराई भूभागमा आंशिक बद्री लागल बा। कोशी बागमती गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेशके हिमाली ओ पहाड़ी भूभागके डान्चे ठाउँमा तथा कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशके हिमाली ओ पहाड़ी भूभागमा एक दुई ठाउँमा मध्यम वर्षा ओ हिमपातके सम्भावना बा। कोशी बागमती गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेशके तराई भूभागके एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षाके सम्भावना बा। आज रातका देशके पहाड़ी ओ तराई भूभागमा तथा कोशी ओ बागमती प्रदेशके हिमाली भूभागमा साधारणतया बद्री लगुया बा ओ बाँकी भूभागमा आंशिक बद्री लगुया बा। तराई भूभागमा बिहान ठिसे हुसु लगुयाबा। मधेस लगायत कोशी बागमती गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेशके तराई भूभागके कुछ ठाउँमा मध्यमसम्म, कोशी बागमती ओ गण्डकी प्रदेशके हिमाली ओ पहाड़ी भूभागके एक दुई ठाउँमा हल्का थेसे हल्का तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशके तराई भूभाग ओ मधेस प्रदेशके एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षाके सम्भावना बा। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निसर्ना कटि ढुक्क हुई आग्रह कलबाट। दशौं राष्ट्रिय खेलकुदके मूल आयोजक समितिके आइतबार सुर्खेतमा बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेल प्रतियोगिताके उत्सव आज से शुरू हुइना बटुलबाट दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुइना कि निहुइना कैकन क्यू दुविधामा नै पर उहाँ आग्रह कलबाट। उहाँ कल दशौं राष्ट्रिय खेलकुदके उत्सव आज से शुरू हुई उहाँमारा प्रतियोगिता मंगसिर 16 गते हो। मन्त्री पोखरेल आघक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता से प्रभावकारी ढंगले इहे चोके प्रतियोगिता हुना विश्वास व्यक्त कलबाट। प्रतियोगिता मजासे संचालन कर व तीन तहके सरकार सक्कु सरकारवाला व सक्कु पक्ष मिलका आघ बरपना अवस्था आइलक उहाँ बटुलबाट। यो समाचारकी सँग खोज खबर ओराइल अन्तिम जैति जैति खबरके मुख्य शीर्षक फेर्से। जानकी गाउँपालिका मन विपद प्रतिकारीकै विषयमा विद्यार्थी हुन जानकारी देती यी काम मजा हुलक शिक्षक हुनके कहाई। 15 वर्ष थेसे सिलाई कटाई व्यवसायमा रमैटी टिकापुरकी रीता चौधरी शिपसिक व मेहनत कर युवा हुन रीताके सुझाव। सुदूरपश्चिममा 7,32,000 नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध व करलेखा विधि व डिजिटल क्षमताबारे कैलालीकै मदिरा व्यवसाय हुन प्रशिक्षण। लिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सक्बी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देते। मैं गीता फे विदाय दू। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।

0: भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे शुरू करल मनै घर सिज्जा छेकल।
3: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का?
2: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो ना, कबू कहुँ घुमत जाए त था पाए।
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरगी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
6: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने पट्टा नि पैना त
1: अदि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुगर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।
1: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर कैलाली।
2: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे गोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
3: अदि गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशानाटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा अस्तरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन लबाटी
3: ए ले ले ठिक बा चल हाली भाटवट खाइ औ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स न गर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक टिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261।

0: सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
1: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली हुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइती रहल बा।
0: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9800476 77417।

0: दाइ बेड्डो भूख लाग्छ, खाजा बाँकी नै। ए काकी फे आइल बाटी, राम राम काकी।
1: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसनले छाइट भारी हो स्याकल बाजे। आप भली भुवास कर दिए परल है, समय में भुवास कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरिना और जनक बात फे सुननी पर्ना।
2: आ दीदी फे ऊ बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह, छुट्टी में भुआस कर देख मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी, मई चाहे बाल विवाह कर नी चाहू, ये बाल विवाह नी करन दीदी।
3: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकर, ऊ हिंसा के शिकार बन सकर, वही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थी, ऊ रोजगार फिर नहीं पाए, ओ गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई, अस्तिन करैल से 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकर, ओ अस्तिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 300 देगिलक जनहित में जारी संदेश।
4: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली को 9 वार्षिक साधारण सभा होने बारे को सूचना। साना किसान का लागि लगानी ल्याउँछौ सुनौलो बिहानी। आउँदै गरेको बड़ा दशैं, शुभ दीपावली, नेपाल सम्बत एवं छठ पर्व को अवसर में हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी, शुभचिन्तक, पत्रकार, समाजसेवी एवं देश विदेश में रहनुहुने आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबार का दिन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ को सभाहालमा हुन गई श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को 9 वार्षिक साधारण सभा में सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति का लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौं। स्थान टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ को सभाहाल, समय बिहान 10 बजेदेखि, आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टीकापुर कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-641, मोबाइल नम्बर 98-432-86-713।

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।